अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

ला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारों भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्म भूमि की, श्री कृष्ण जन्म भूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंग

रामचंद्र जी की जय, श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, श्री रमापति रामचंद्र जी की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम्।

जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये हर हर महा।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भक्त की जिज्ञासा पराकाष्ठा पर है, वह प्रभु के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। भगवान से दिव्य चक्षु पाकर वह उस अति तेजस्वी दिव्य शस्त्रों व वस्त्रों से युक्त विशाल काय बहुआयामी स्वरूप को देखकर रोमांचित एवं कदाचित भयभीत हो उठता है।

श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप को प्रणाम करता हुआ अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, मैंने अज्ञानतावश आपको मित्र व सखा समझा, आपका उपहास किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे विश्वमूर्ते, मुझ पर प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाओ।

जनार्दन अपना सौम्य रूप दिखलाकर प्रिय भक्त को आश्वस्त करते हैं। वे कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ इस स्वरूप के दर्शन किसी वेद ज्ञान, तप, दान अथवा पूजा से नहीं, अपितु मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना, सती दाह से दुखी होकर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए। इसका लाभ उठाते हुए असुर देवताओं पर हावी हो गए। असुर राज तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। हैरान परेशान देवताओं के लिए शिव पुत्र का पैदा होना आवश्यक बन गया। बहुत विचार विमर्श के साथ ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं के साथ गिरिराज हिमवान के पास गए। वहां सबने मिलकर महादेवी शिवा की स्तुति की। प्रसन्न होकर जगदम्बा ने वरदान दिया कि वे हिमवान की पत्नी मीना के गर्भ से पार्वती बनकर अवतरित होंगी। इस प्रकार शिव मोहिनी पार्वती का जन्म हुआ। देवी पार्वती युवावस्था को पहुंच चुकी थीं, परंतु महादेव की तपस्या का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। परम पिता ब्रह्मा ने चिंतित हिमवान को आदेश दिया कि पार्वती शिव प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करें। लीजिए सुनिए अब आगे की कथा। इस प्रकरण के रूपांतरकार और लेखक हैं अनिल सूद।
1: परम विद्वान शौनक जी, देवी पार्वती को तपस्या करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु देवादिदेव का ध्यान तब भी न टूटा।
2: महाभाग सूत जी, इससे तो हिमवान और मीना की चिंता और भी बढ़ गई होगी।
1: हाँ, ये तो स्वाभाविक ही था, परंतु मीना की चिंता का कारण कुछ और ही था।
2: वो क्या सूत जी?
1: उनके हृदय में रह रहकर मुनि नारद का कथन कौंध रहा था कि पार्वती को एक कुरूप अर्धनग्न दरिद्र पति रूप में प्राप्त होगा। एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी।
2: वो क्या सूत जी?
1: देवी मीना अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो सो रही थी। देवी पार्वती भी अपने दैनिक व्रतों को श्रद्धा पूर्वक पूरे कर सो रही थी। तभी ब्रह्म मुहूर्त में माता और पुत्री को एक ही जैसे स्वप्न आए। एक के लिए वो सुस्वप्न था तो दूसरी के लिए दुस्वप्न।
3: अरे कैसा दिव्य वृषभ है ये! गले में स्वर्ण की घंटी, किसी राज मुकुट जैसे सिंह, मानो स्वयं नंदीश्वर चले आ रहे हो। ओह कैसा भद्दा काला वृषभ है! तीखे नुकेले सिंह, मानो अभी मेरा तन मन चीर डालना चाहते हो। बिल्कुल यमराज के भैंसे के समान। वृषभ पर आरूढ़ सन्यासी का मुखमंडल कितना तेजोमय है! ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण जगत का पुरुषत्व उन्हीं में समा गया हो। होठों पर मंद मंद मुस्कान। वृषभ पर ये कुरूप भभूत धारी बैठा है, तन पर व्याघ्र खाल उड़े, मेली कुचैली जटाएं, मानो वर्षों से स्नान न किया हो। रक्त रंजित नेत्र।
4: भिक्षुक आया है देवी, भिक्षा दो।
3: अवश्य ऋषिराज, आप यहाँ इस आसन पर क्षण भर विश्राम करें, मैं अभी आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ।
5: नहीं, तुम कोई कुलहीन अघोरी लगते हो। हम ऐसे अपवित्र और अस्वच्छ व्यक्तियों को भिक्षा नहीं देते।
4: जलपान के लिए धन्यवाद देवी पार्वती, आप अति सभ्य एवं धर्माचरण वाली हैं।
3: आपकी इस प्रशंसा से मैं धन्य हुई मुनिवर। ये सब प्रभु शंकर की भक्ति का ही फल है।
5: अरे ये कितनी कुटिल और कामुक

0: दृष्टि से पुत्री पार्वती की ओर देख रहा है। कौन हो, कौन हो तुम?
1: मैं शिव हूँ, पार्वती को साथ ले जाने आया हूँ।
0: मेरा जीवन सार्थक हुआ देवाधिदेव, अंततः आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो ही गए। चलिए देव,
1: चलिए।
0: नहीं नहीं, तुम शिव नहीं हो सकते, तुम अवश्य ही कोई मायावी असुर हो, मेरी पुत्री का हरण करने आए हो। छोड़ो, छोड़ो इसका हाथ, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, परंतु इसे तुम्हारे जैसे कर्कश और कुलहीन के हाथों नहीं सौंपूंगी, नहीं, कभी नहीं। रक्षा।

0: ये क्या, क्या मैं स्वप्न देख रही थी? हे प्रभु, ये कैसा भयंकर स्वप्न था, भयंकर स्वप्न, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। कैसा कैसा भयंकर था, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हे प्रभु, हे प्रभु, ये स्वप्न सच न हो प्रभु, सच न हो दया निदान, ये स्वप्न सच न हो। चलो चलो देव हिमान से इस स्वप्न का अर्थ पूछती हूँ।
1: कितना मनोरम और दिव्य स्वप्न था। स्वयं देवादिदेव मुझे लेने आए थे। मैं तो इस स्वप्न मात्र से धन्य हो गई।
2: भार्य मीना
3: जी। देव।
2: पुत्री पार्वती
3: जी। पिताजी,
2: आप दोनों के स्वप्नों में प्रभु शिव शंकर ने ही दर्शन दिए थे। पुत्री पार्वती, तुम्हारे हृदय पटल पर बचपन से ही तेजस्वी प्रभु की सौम्य और सुकोमल छवि अंकित है, इसलिए वो इसी रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए। और भार्य,
3: कहिए स्वामी।
2: आपके मन से नारद जी द्वारा चित्रित प्रभु छवि मिट नहीं पा रही है, इसीलिए वो आपके मनवांछित रूप में प्रकट हुए, परंतु थे दोनों देवाधिदेव ही।
3: स्वामी हिमवान, यदि शिव जी का वही स्वरूप है जो मैंने देखा है, तो वो मुझे स्वीकार नहीं है।
2: भार्य।
3: हाँ, मैं कदापि अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में नहीं दूंगी।
2: तुम्हारा पुत्री प्रेम आदरणीय है, मैं भी पार्वती से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि तुम, परंतु भार्य, हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते, और तथ्य यह है कि देवर्षि नारद की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। पार्वती को शिव मिलेंगे, परंतु किस रूप में, यह जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी देवी, प्रतीक्षा।
4: मुनिवर शौनक जी, पिता के मुख से ये सुनकर कि उन्हें शिव अवश्य मिलेंगे, देवी पार्वती प्रसन्न मन से फिर शिव आराधना में जुट गई। देवी मैना भी शांत हो गई, परंतु अनयत्र विपत्तियों के घोर घन गरज उठे थे।
5: विपत्तियों के घन, वो कैसे सूत जी?
4: देवादिदेव के ध्यान मग्न होते ही असुरों के उत्पात बढ़ गए थे। तारकासुर इतना बलशाली हो गया कि उसने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। देवेंद्र को हराकर वो इंद्रासन का स्वामी भी बन बैठा। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी एकत्र होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे।

0: हम जानते हैं देवगण, हम जानते हैं ये विश्व वृक्ष हमारा ही बोया हुआ है। हमारे वरदान से सिंचे हुए इस असुर ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है।
1: और ब्रह्मदेव, ये वृक्ष तब तक नहीं कट सकता जब तक स्वयं शिवपुत्र रूपी कुल्हाड़ी इसे काट ना डाले। कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा विधेय, महाप्रभु की तंद्रा भंग करनी ही होगी।
0: हाँ विष्णु जी, जो हम नहीं चाहते थे वो हमें अब करना ही होगा। प्रभु के मन में अस्वाभाविक रूप से प्रेम का प्रत्यारोपण करना ही होगा। कामदेव।
2: आज्ञा परम पिता ब्रह्मा।
0: हमारी इच्छा है पुत्र कामदेव कि तुम रति के साथ गंगोत्री तीर्थ जाओ। वहां ध्यान मग्न शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति आसक्ति भरने का प्रयास करो।
2: अर्थात उनकी तपस्या भंग कर दूं? दक्षराज के प्रति महाप्रभु का क्रोध सबको ज्ञात है प्रभु।
0: कामदेव, हम देवता हैं, जन कल्याण के लिए हमें सभी विषमताओं का सामना करना पड़ता है। भयभीत होना हमारे स्वभाव में नहीं है। फिर तुम्हारे पास तो अचूक काम बाण भी हैं, ऐसे ही कठिन अवसरों के लिए तो हैं। आवश्यकता पड़े तो उनका उपयोग करने में झिझकना नहीं।
2: आपकी आज्ञा का पालन होगा परमपिता।
3: विप्रवर शौनक जी, कामदेव और रति अपने दल बल समेत गंगोत्री तीर्थ पहुंचे।
4: महाभाग सूत जी, दल बल से आपका क्या तात्पर्य है?
3: शौनक जी, अपनी सहायता के लिए रति और कामदेव वसंत देव तथा अनेक किन्नर वादकों को भी लेकर गए थे, ताकि शिव जी का मन मोहने के प्रयास में कहीं कोई कमी न रह जाए।
2: देवी रति, मन तो नहीं करता कि इतने निश्चल भाव से तपस्या में लीन महाप्रभु की तपस्या में विघ्न डाला जाए, परंतु ब्रह्म आदेश मानना हमारा परम कर्तव्य है। आओ कोई युक्ति सोचें देवी, जिससे प्रभु की तंद्रा भंग हो सके।
5: जी देव।
2: नृत्य नृत्य। हाँ देवी, नृत्य। देवी रति, तुम नृत्य करो।
5: नृत्य?
2: हाँ, तुम्हारे नुपुरों की झंकार और किन्नरों के वाद्यों के मधुर स्वर अवश्य ही महादेव का मन मोह लेंगे। किन्नरों, अपने वाद्यों से ऐसा मधुर और उत्तेजक संगीत उत्पन्न करो जो प्रभु के हृदय के तारों को झंकृत कर दे।
3: प्रभु पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। देवी रति, भाव भंगिमा को और उत्तेजक करो, संगीत की गति तीव्र कीजिए किन्नरों। नहीं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, और उत्तेजक, उत्तेजना की चरम सीमा, और तीव्र गति, और गतिमान संगीत।

0: बस बस देव बस, और संभव नहीं है।
1: देवी,
0: नृत्य करते करते 8 प्रहर बीत गए हैं, मेरे पांव प्राणहीन हो रहे हैं, मेरे नुपुर टूट चुके हैं जो अमंगल सूचक है। देव कुछ कुछ और उपाय कीजिए।
1: और उपाय? हाँ, वसंत, वसंत देव। वसंत देव के आगमन से तो हिमपिंड भी पिघलना आरंभ हो जाता है। देवी, चारों ओर रंगों की फुहारें फूट उठती हैं, मन आनंद के हिंडोले में झूल उठता है। वसंत देव, आप ही अपनी लीला रचिए, इस कठोर पर्वत प्रदेश को वसंती सौम्यता में बदल डालिए। वसंत

0: नजरें बदल डाली। वसंत देव, हो देवी रति, वसंत देव भी सफल नहीं हो पाए।
1: देव।
0: हाँ देवी।
1: अब तो मात्र एक ही उपाय बचा है।
0: क्या?
1: आपके काम बाण।
0: हाँ?
1: परम पिता ने भी आपको इनके प्रयोग की अनुमति दी है।
0: आप ठीक कहती हैं देवी रति, ठीक कहती हैं आप। मेरे सामने अब और कोई विकल्प नहीं रह गया है। परंतु देवी रति, मैं तो इसकी कल्पना मात्र से सिहर उठता हूँ। भय है कि देवाधिदेव की ओर बाण लक्षित करते समय कहीं मेरे हाथ ना कांप उठे, लक्ष्य ना चूक जाए।
1: स्वयं देवाधिदेव का स्मरण करते हुए बाण चलाएं देव, वो अलक्षित नहीं हो पाएगा।
0: हाँ, उधर उस विशाल वृक्ष की ओट से वार चलाता हूँ। प्रभु पर सामने से वार करने का साहस मुझ में नहीं है। वसंत देव, किन्नरों, आप भी वृक्षों की ओट ले लें। प्रभु, देवाधिदेव, महादेव, क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा, मैं विवश हूं। ओम नमः शिवाय। ओम

0: शिवा। अरे अरे अचानक मेरे शरीर में ये कंपन कैसे हुआ? मानो कोई अदृश्य वस्तु मेरे आर पार हो गई हो। ये मेरे चारों ओर ये मनोरम वातावरण, मेरे अंदर कौन सी भावना जाग रही है? परंतु मैं तो तपस्या कर रहा था, उसमें ये विघ्न किसने डाला? किसने मेरे चित्त में ये विकार पैदा किया?
1: देव।
0: हाँ देवी।
1: दूसरा बाण चलाइए, प्रभु का क्रोध बढ़ रहा है।
0: हाँ देवी। हाँ। अरे कामदेव ठहर जा, धनुष में ही रोक ले अपने बाण को।
2: हे परमपिता, हे भगवान विष्णु, शक्ति दे, शक्ति दे ताकि मैं दूसरा बाण चला सकूं और प्रभु का क्रोध शांत कर सकूं। ये क्या, मेरा बाण प्रभु तक पहुंचने से पूर्व ही ध्वस्त हो गया?
0: तो साहसी कामदेव।
2: हे प्रभु,
0: तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुझे इस अपराध का दंड मिलेगा। तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा।
1: महाप्रभु का तीसरा नेत्र खुल रहा है।
2: देवी,
1: देवी, ये तो अग्नि किरण बनकर मेरे पति की ओर बढ़ रही है।
2: महादेव,
1: इसने तो कामदेव को भस्म कर डाला।

क्यों आपको दूसरा बांध छोड़ने को प्रेरित किया? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?

0: ब्रह्मदेव, देवी रति तो पति वियोग में मूर्छित हो गई और देखिए तो महाप्रभु के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि विकराल रूप से फैलने लगी है। मूर्छित देवी रति को भी निगलने को झपट रही है। कुछ कुछ करें विधात।
1: मैं नेत्र बंद कर

0: दिव्य अश्व का स्मरण करता हूं।
1: अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि।
0: दिव्य अश्व उपस्थित हो। हे दिव्य अश्व, इस अग्नि को अपने शरीर में धारण करो।
2: अग्नि इस वाडव अर्थात अश्व में प्रवेश कर गई है। ब्रह्मदेव, नेत्र खोलिए।
0: हे वडवानल, जाओ समुद्र के गर्भ में समा जाओ। प्रलय काल तक समुद्र का जल पीकर इस अग्नि को शांत रखना। प्रलय आने पर ही तुम समुद्र से ज्वालामुखी के रूप में फूटकर सब कुछ भस्म कर दोगे।

0: हे देव, हे स्वामी, मैं आपकी दोषी हूँ, मुझे क्षमा करें। देव, आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, त्याग दूंगी।
1: शांत शांत हो जाओ पुत्री रति।
0: कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं? हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस अभागन का भी अंत कर दीजिए। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम।
1: हे दयानिधान, हे कृपा सिंधु परमेश्वर, नेत्र खोलिए प्रभु, हम भक्तों पर कृपा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए।
2: हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा हृदय बहुत खिन्न है।
3: महाप्रभु, आप तो भक्तों के बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं, फिर कामदेव ने ऐसा अपने किसी स्वार्थ साधन के लिए तो नहीं किया था?
1: उसे हमारा ही आदेश था प्रभु। तारकासुर से पीड़ित हम सब देवों ने ही उससे यह करवाया था। देवाधिदेव, यदि आपने अपना क्रोध नहीं त्यागा और हमें क्षमा नहीं किया, तो हम सब यही समझेंगे कि आप हम सबका संहार कर देना चाहते हैं।
3: दयानिधान, देवी रति पर दया कीजिए प्रभु, कामदेव इन्हें लौटा दीजिए प्रभु। बिना पति पत्नी शोषण और धिक्कार का पात्र बन जाती है।
2: विष्णु हरे, हम अपने ही किए को बदल नहीं सकते, परंतु रते
0: जी महाप्रभु,
2: द्वापर में कामदेव कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, उनका नाम प्रद्युम्न होगा। जाओ, शंबर नगर में कामदेव के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करो।
0: जो आज्ञा देवाधिदेव, जो आज्ञा।
1: परंतु महादेव, काम के बिना तो दैहिक संबंधों द्वारा उत्पत्ति ही समाप्त हो जाएगी, सृष्टि का विस्तार कैसे होगा महाप्रभु?
2: ठीक है, मैं सबके हृदयों में काम को फिर जीवित कर दूंगा। निश्चिंत रहिए, मेरी तपस्या भंग हो चुकी है, अब मुझे कैलाश लौटना होगा।
4: और महाज्ञानी शौनक जी ये कहकर शिवशंकर अंतर्धान हो गए। देवी रति पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में शंबर नगर में जा बसी। सभी देवता अपने अपने धामों को लौट गए।
5: परंतु महाभाग सूत जी, समस्या तो वही की वही रह गई। इस सब उपक्रम का उद्देश्य था तारकासुर वध के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति, वो तो नहीं हो पाई ना।
4: शौनक जी, कार्यों में व्यवधान तो आते ही रहते हैं,

0: शिव पुत्र उत्पत्ति कुछ साधारण कार्य तो था नहीं, दैवी विधान था जिसे अपने निश्चित समय पर पूर्ण होना था।
1: परंतु सूची, व्यवधान आने पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा जाता, प्रयास तो जारी रखने ही पड़ते हैं।
0: विप्रवर सूची प्रयास जारी रहे, या यूं कहिए कि प्रयासों की तीव्रता बढ़ गई।
1: वो कैसे सूची?
0: बताऊंगा महामुनि शौनक जी, अवश्य बताऊंगा, परंतु आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कथा भी लंबी है, जारी तो रहेगी।
2: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के 9वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक से लिया गया था।
3: आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी। कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई, समझ गए गोपी बड़ी चालाक। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाएं तो सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ जरा सोचो माखन कैसे खा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग के रखते हैं। मैया मोरी

इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गए? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया।

विशेष बात हो गई। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया।

एक बार आपकी जोरदार तालियां हमारे सब साथी कलाकारों के लिए। साइड दम पर मधुर एगे, गिटार पर हिमांशु, बिजुधर,

और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय, आज के अनाउंसर स्मिता परिक और हारमोनियम पर

बालकृष्ण की प्रीत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते बंसी बजाते माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल प्रीत तो कर बैठी मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी बजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी पीत हमारी।

मीडियम वेव 343 शरिया 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए है जलंधर केंद्र। थानू दस दईए कि तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो ते समय शाम दे 4:30 होए ने। हुण असी थानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हां जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

अब धनुष यज्ञ का समाचार सुनते ही मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ ले जनकपुर की ओर चल देते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज़ सुनते ही परशुराम जी की तपस्या

भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस विशेष नाटक की

चौथी कड़ी सुनवा रहे हैं। पिछली कड़ी में आप माता कैकेयी के हठ और कोप भवन का प्रसंग सुन चुके हैं। वचन से आबद्ध पिता के सम्मान के लिए प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर अयोध्यापुरी की समस्त जनता को रोता छोड़कर चले जाते हैं। अब सुनिए

0: तमसा नदी के तट पर शोक और थकान के कारण सब लोग सो गए। दो प्रहर रात्रि बीत जाने पर रथ के निशान छिपाते सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
1: प्रभु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम।
2: बैठो निषाद राज, सब कुशल तो है?
1: आपके चरण कमल के दर्शन से मैं सकुशल हूं। परिवार सहित मैं आपका सेवक हूं। कृपा कर मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे, जिससे आपकी कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो।
2: सखे, तुमने सच कहा है, किंतु पितृ आज्ञा बरस चारि दस बासुबन मुनिप्रत बेशु आहारु, ऐसी दशा में ग्राम बासु नहीं उचित।
0: निषाद राज को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम के लिए सब प्रबंध कर दिया। श्री राम ने संध्या आदि से निवृत्त होकर शयन किया। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवही सोवन मृदु बानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। निषाद राज लक्ष्मण के पास आ बैठे और कहने लगे,
1: लक्ष्मण जी, इंद्र महल से भी अधिक सुहावना अयोध्या का राजमहल है। वहां की सुख सुविधाओं में सोने वाले सीताराम रति और कामदेव के दर्प को अपनी शोभा से मर्दित करते थे, वही आज सोवत महे विधि बामन के ही।
3: निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। सखा समुझियस परिहरि मोहू, सिय रघ पीर चरण रथ होहू।
1: आप यथार्थ कहते हैं। अरे, बातों ही बातों में सगेरा हो गया।
4: तात, कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होए।
2: तात सुमंत्र, आपने धर्म के सारे सिद्धांतों का संचय किया है, आप भली प्रकार जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मेरी ओर से आप पिताजी के चरण स्पर्श कर कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करें और उनसे निवेदन करें कि मेरे लिए किसी बात की चिंता वे ना करें। आपका भी यही कर्तव्य है, आप हम लोगों की चिंता में पिताजी को कोई कष्ट ना होने दें।
3: खेकेई से प्रतिज्ञा करते समय उन्हें कष्ट नहीं हुआ?
5: लक्ष्मण, ये बड़ी अनुचित बात है।
2: सुमंत्र जी, आपको मेरी शपथ है, लक्ष्मण का संदेश वहां

0: जाकर न कहना।
1: सीता जी वन के दुखों को न सह सकेंगी, इसलिए सीता जी के अयोध्या लौटाने का उपाय आप और हम करें, ये भी महाराज का आदेश था। अन्यथा उन्होंने कहा था कि मैं उसी प्रकार नहीं जी सकूंगा जैसे जल के बिना मछली।
0: सीते, यदि तुम अयोध्या लौट जाओ तो सास ससुर, गुरु प्रियजन तथा परिवार सबकी चिंता मिट जाए।
2: प्रभु, आप करुणा सागर और परम विवेकी होकर ऐसा कहते हैं? क्या तन को छोड़कर छाया और सूर्य को छोड़कर प्रभा कहीं विलग रह सकती है?
1: किंतु राजकुमारी जी,
2: बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हु सुखद न लागा, अगम पंथ बन भूमि पहारा, कर के हरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा।
1: मैं अयोध्या लौट कर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? महाराज को क्या उत्तर दूंगा?
2: सासु ससुर सन मोरे होती, बिनय करबि परि पाए, मोर सोच जनी करई कछु, मैं बन सुखी सुभाए। और फिर प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग शमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनी भोरे।
3: सीता की शीतल वाणी सुनकर मणिहीन सर्प की भांति सुमंत्र व्याकुल हो गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए।
0: प्रिय केवट, गंगा पार जाने के लिए नौका ले आओ।
4: नहीं महाराज, तुम्हार मर्म में जाना।
0: क्या कह रहे हो तुम?
4: चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु एही।
0: कहां चरण और कहां चढ़ी?
4: जी हां, जानता हूं आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदरी बन बैठी थी, और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल है। यदि मेरी नौका मुनि की स्त्री बन बैठी तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण का सहारा है, और कोई दूसरा रोजगार भी तो मैं नहीं जानता। मेरी तो केवल इतनी ही विनती है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहूं लखन, पै जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो।
0: सीते, लक्ष्मण, देख रहे हो केवट की चतुराई? अच्छा भाई, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जा जल्दी कर, जल्ला पैर धोले और शीघ्र पार उतार।
5: केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखार कर जलपान करके केवट ने परिवार सहित अपने आप को धन्य माना, फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम को गंगा पार ले गया।
4: लीजिए महाराज, अब आप गंगा पार आ गए।
0: अरे, हमने इसे कुछ भी नहीं दिया।
2: ये मणियों की मुद्रिका ही इसे दे दो।
0: केवट, पार की उतराई ले लो।
4: नाथ, आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा।
2: नहीं केवट, तुम्हें उतराई ले लेनी चाहिए।
6: अरे, तुम अपनी मजूरी लेने से इनकार कर रहे हो? कैसे केवट हो तुम?
4: मैं तो केवल प्रभु के चरणों में भक्ति चाहता हूँ।
0: तथास्तु।

0: इसके पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, सीता और निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी में स्नान कर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनिवर ने श्री राम जी के दर्शन कर अपने आप को धन्य माना। रात को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान कर मुनि को सिर नवाकर वे वहां से चल दिए। फिर उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर समस्याम। श्री राम जी ने निषाद राज को समझा बुझाकर विदा कर दिया। वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले।
1: अरे आओ आओ, उनके दर्शन कर इसी क्षण नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लो।
2: भद्र, कैसी शीतल छाया है। हमने नरम घास और कोमल पत्ते बिछा दिए हैं। आप लोग थक गए होंगे, खबर यहाँ बैठकर थकावट दूर कर लीजिए।
1: फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे।
3: आप लोग व्यर्थ कष्ट न करें, आपकी कृपा के लिए हम अनुग्रहित हैं।
2: यह लीजिए, आपके लिए शीतल जल है, आचमन तो कर लीजिए।
3: सीते, लक्ष्मण, जल ग्रहण करो।
4: धन्यवाद।
1: चलिए हम आपके साथ आगे तक चलेंगे।
3: नहीं नहीं, आप लोग हमारे लिए कष्ट न करें, कृपया लौट जाइएगा।
4: चलो आओ आओ, चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो। सखी, कैसे माँ बाप है इनके, ऐसे कोमल बालकों को वन में भेज दिया।
5: विधाता की कठोरता को कौन दोष दे सकता है भला।
4: आह, कितने सुंदर हैं ये।
5: वाह,
4: इन्हें देखकर थके नारी नर प्रेम प्यासे मनहुमरे के मृग देख ही दिया से।
5: आओ चले इनके पास चलकर इनसे कुछ पूछें।
4: चलो राजकुमारी, विनय हम करही, तिया सुभाए कुछ पूछा तो डरही।
5: स्वामी, अभिनय क्षम भी हमारी, बेलगु न मानव जानी गवारी।
4: कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे।
6: सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे।

0: ही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जा ही चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेख विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसी प्रकार देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
1: हे मुनिनाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी हथेली पर सारा संसार बेर के समान है। माता कैकेयी के व्रत निर्वाह के लिए पिता की आज्ञा का पालन और भरत जैसे भाई का अकंटक राज तिलक हो, इस कारण मैं वन आया हूं। यहां आकर आपका दर्शन हुआ।

0: वह मेरे पुण्य का प्रभाव है।
1: साधु साधु, राम आप रघुवंश के पताका हैं। ऐसा कहना आपके लिए सहज और सरल ही है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीशु अहिषु महिधर लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी।
0: मुनिवर, यह सब आपके पुण्य प्रताप का ही फल है, मैं तो आपका।
1: आपके संबंध में और क्या कहूं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह, जगपेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानि निहारा, सोई जानै जहि देव जनाई जानत तुम्ही तुम्हें हो जाए। राम देख सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध हुए सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा जस काछिए तस चाहिए नाचा।
0: मुनिवर आज्ञा दें, मैं कहाँ वास करूं।
1: ए राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हों वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अधिक क्या कहूं, जस तुम्हार मानस विमल हंस ने जी हां त्यासु मुक्ताहल गुन गन चुनई राम बसहु हिया तासु, स्वामी सखा पितु मात गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन कई बसहु सीय सहित दो भ्रात।
2: महामुनि वाल्मीकि ने श्री राम जी की सर्वव्यापकता और उनके व्यास से सत्पुरुषों की महिमा का विस्तार से वर्णन कर चित्रकूट की अपरिमित महिमा का भी बखान किया। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी समेत चित्रकूट पर निवास करने लगे। इधर तो श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, उधर जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या आए वो कथा सुनिए।

0: अपने मन में भांति भांति के विचार करते, स्वयं को पापी और अपराधी मानते हुए शोकाकुल सुमंत्र किसी प्रकार अयोध्या पहुंचे। नगर में प्रवेश करते सुमंत ऐसे सब चाहते हैं मानो किसी की हत्या करके आए हों। उन्होंने सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। संध्या के समय अंधेरा हो जाने पर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और रथ को द्वार पर ही खड़ा करके चुपचाप महल में घुसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर लोग विषादग्रस्त हो उठे।
1: हा लक्ष्मण,
2: जय जी। महाराज के चरणों में सुमंत्र का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो।
1: सुमंत्र, कहो राम कहाँ है? इधर आओ सुमंत्र, इधर, तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कहें रघुनाथ लखन वैदेही। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? सखा राम उसी लखु जय तामो ही पहुंचाओ, ना ही तो चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव।
2: महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाण ये सोच सकल हितकारी। महाराज, श्री राम ने गुरु वशिष्ठ, भरत, पुरवासी आदि सभी को सांत्वना के संदेश दिए हैं और भरत जी से कहने के लिए कहा है कि वे सब माताओं की समान सेवा करें और पिता को उसी प्रकार रखें जिससे जिससे उनको कभी मेरी चिंता ना हो।
1: और लक्ष्मण तथा सीता ने कुछ नहीं कहा?
2: सीता जी कुछ कहना चाहती थी, उनकी वाणी अवरुद्ध थी, स्नेह से शिथिल, वे कुछ कह नहीं पाई।
1: सुमंत, कृपालु राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? मेरे स्नेही राम कहाँ है? मेरी प्रिय पुत्र वधु जानकी कहाँ है? राम, कौशल्या, श्रवण कुमार की कथा तो तुम जानती ही हो, वही शाप अब मुझे लगा है, वही शाप मुझे लगा है। राम के बिना इस अवस्था में कैसे मैं जीवित रह सकूंगा? हमें धिक्कार है, प्रेम का प्रण निभाने वाले इस शरीर को धारण करके ही क्या करूंगा?
3: और रघुनंदन प्राण पीते तुम बिना जिये बहुत दिन बीते, और जानकी लखन रघुवर जल

0: ही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। प्रातःकाल होने पर मुनि वशिष्ठ ने समयानुकूल सब प्रकार का इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रख दिया गया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, उन्हें बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। उनसे कह दिया गया कि अयोध्या का किसी भी प्रकार का कोई समाचार उनसे न कहें। किसी प्रकार दोनों भाई अयोध्या आए। नगर में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, उनके मन में भय और विषाद व्याप्त है। पुत्र को आया जान कैकेयी हर्षित होकर दौड़ी और दोनों भाइयों को राजभवन में ले आई। भरत को उदास देखकर पूछने लगी,
1: हमारे नैहर में कुशल तो है?
2: हाँ, सब कुशल है। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी तथा प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं?
1: तात, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगारू, भूपति सुरपति पुर पगुथारू।
2: तात, समय में आपका दर्शन न कर सका और आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए। माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताओ।
1: बेटा भरत, राजा से मैंने दो वर मांगे थे, राम 14 वर्ष का वनवास करे और तुम्हारा राज तिलक हो। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परिणाम स्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। तात, राव नहीं सोचे जो
2: पापिन सबहि भांति कुल नासा। यदि तुम्हारी ऐसी ही कुरुचि थी तो पैदा होते ही तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला?
1: बेटा,
2: पेड़ को काट कर पत्तों को सींच रही हो। तुमने तो मछली के जीवन आधार पानी को ही उलीच दिया। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी, तू जननी भाई विदेशन कछु न बसाए। हाय, जब तय कुमत जी अठायाऊ खंड खंड हुई हृदय न गया, परमागत मन भय नहीं पीरा, करिन जी मुह पर न कीरा। पर मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि भूप प्रतीत तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी।
1: लेकिन बेटा, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारी मंगलाकांक्षिणी हूँ।
2: सच पता तू कौन है? सारे संसार के जीव जंतु जिस राम को प्राण से अधिक प्रिय मानते हैं, वो भी तुझे अप्रिय जान पड़े। जो हसी सो हसी, मुंह मसिलाई आंखें उठी उठी बैठ ही जाए।
1: बेटा,
3: तू रोक भी।
2: कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तभई काहे न बाझा। धिक्कार है मुझे।
1: तुम ठहरे था
2: जननी जे अग

0: पिता सु तुम्हारे, गाय गोठ बहु सुरपुर जारे, चे अग तिय बालक बध कीने, मीत मही पति बाहुर दीने, जे पातक उपपातक आही, करम बचन मन भव कवि कही, ते पातक मोहि हो विदाता, जो यहु हो मोर मत माता, जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर, ते कई गति मोहि देउ विधि, जो जलनी मत मोर।
1: विधु विष चवे स्रवे हिमु आगे, होई बारी चर बारी बेरागी, भये ज्ञानु परु मिटे न मोह, तुम्हार राम ही प्रतिकूल न हो।
2: अस कही माँ तू भरत हिय लाए, थन पय स्रवही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। सवेरा होने पर मुनिगण राज परिवार के लोग आदि एकत्र हुए। फिर नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गही पद भरत माँ तु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी, यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर राजसभा बैठी। मुनि वशिष्ठ आदि ने भरत को अनेक प्रकार से सांत्वना दी और समझाया।
3: वत्स, आओ मेरे पास बैठो। सुनो भरत भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, अस विचार के ही देई ये दोसु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु, तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही।
4: लेकिन
3: भरत, राजा को अपने वचन प्रिय थे न कि प्राण, उनके प्रिय वचन का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
4: आप कह तो रहे हैं पर
3: भरत, सबकी यही सम्मति है कि राज तिलक उसी का होता है जिसे पिता टीका दे। कल्याण समझकर मेरी बात मानो। हाँ, जब राम लौट आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना।
1: हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा का आदर करना चाहिए और उसे कल्याण प्रद मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति समझकर दुख को त्याग देना चाहिए।
4: आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरी भलाई है, ये मैं भली भांति जानता हूं, पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, शोक समाज राज कहि लेखें, लखन राम सिय पद बिनु देखें। आप सब आज्ञा दें, मैं राम के पास जाऊं, मेरा कल्याण इसी में है।
1: बात मानो बेटा, तुम पर ही सबका ध्यान है, उठो।
3: वत्स, कौसल्या की बात मानो, वे ठीक कह रही हैं, उठो और पश्चाताप मत करो।
4: मेरा जन्म तो रघुनाथ को वन भेजने के लिए हुआ था, अभागा मैं झूठ मूठ ही पछता रहा हूं, किंतु आपने दारुण दीनता कहा, आन उपाऊ मोहि नहीं

0: सूझा, को जिय कै रघुबर बिन बूझा, एक ही आंक इहई मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही।
1: धन्य धन्य हे महाराज भरत,
2: धन्य हे महाराज भरत।
0: पंचो, आप लोग मुझे आज्ञा और आशीष दें, इसमें ही मेरी भलाई है। मेरी विनती सुनकर मुझे अपना मान राम अयोध्या लौट आएंगे, मुझे राम का भरोसा है।
1: महाराज भरत की जय। महाराज भरत की जय।
3: भरत जी का निर्णय सुनकर सबके मन में अपार प्रसन्नता हुई, सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने घर जाकर प्रातःकाल यात्रा की तैयारी करने लगे। कहां ही परस्पर भाव बढ़ काजू, सकल चले कर साजे ही साजू, जे ही राख ही रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। प्रातःकाल होने पर भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया, उनसे कहा कि राज तिलक का सारा सामान साथ ले लो। मुनि वशिष्ठ वन में ही श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। माताओं को आर्त जानकर उनके लिए भी पालकियां सजाई गईं। पूरी तैयारी करके अपार जन समूह के साथ भरत जी वन को चले।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

जासुकों मुनि वर रटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइए सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का देहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है लुटेरे जो दिन रात हम सबको लूटा करते हैं और हम इन सबको प्रसन्न रखते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, ये हमको लूटते रहते हैं। तो इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं

पीयूष पवार जी संगत कर रहे हैं। अब इनका विशेष कमाल देखिए, मैं जो सरगम गाऊंगा ये आपको संतूर पे बजा के सुनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते। इनको मैं एक ही शर्त पर बंबई से यहां तक लेके आया हूं कि ठीक नहीं बजाएंगे तो यहां छोड़ के चला जाऊंगा। जरा ध्यान से सुने पे

बंबई वापस ले जा रहा हूं। इनका एक लड़का है 6 साल का, वो भी बहुत अच्छा संतूर बजाता है और अपने स्कूल में, स्कूल के फंक्शंस में संतूर बजा के सुनाता है तो सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार उसके टीचर ने पूछा, बेटा बहुत अच्छा संतूर बजाते हो, तुम्हारे घर में और भी कोई संतूर बजाता है?

कहा और लोग अभी सीख रहे हैं। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम लोग कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा, हम लोग 14 भाई बहन, 8 भाई हैं, 6 बहनें हैं। तो टीचर ने कहा, सच में? कहता हाँ जी सच में। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा, वह यही काम करते हैं। क्योंकि टाइम मिलेगा तो और कुछ करेंगे।

सुनना बड़े पुण्य का काम है आप लोग कर रहे हैं, और भगवान का भजन गाना उससे ज्यादा पुण्य का काम है। तो कितना अच्छा हो, आप भी गाइए, हम भी गाएं, सब मिलकर ये पुण्य कमाएं। तैयार हो जाइए, पहले मैं गाऊंगा, आप सुनिए, फिर आप गाइए, मैं सुनूंगा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

everybody, bye-bye!

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पीछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।